ना रोंगन नुबा ngenjer cha jin dong ga nong dong zuo zu ge qian su xian kong ne suo du gu xian रोंगन नुबा दोंग चांग ब चो वन बिन दांग सी जि बा ले रोंचे ले गा वरे वा थेम बो शिया नि जे यान रम बो लु शिया नि का देवा ला पा बु को को जे इन बा रे रोंग के रोने जुलेन सी जे ते ले ला मो शे म ना उ रोंग के रोने ला ता यो जे दे जुलेन से थु चांग चोंग दोंग चि चो चो व छे जे गो ने तु बा जे दे गा गा टो टो गो चो व छे जे छु सो सो व गा नि थ जे चा गु रोंग जी ना रोंग के रोंग ला जि जोंग जे बा दे यान ला रोंचा रोमिन चन दिशे दे तिने दोरगुला लुफा देथोंला छिन छिबा दों रोंग के हिजों दों छिनि जिसन जंबा मुये जे छवा दों खोयाला तेंथो छिबा रोनी जा रेंतों छरन देबा छिबा मयिन जे चकर दों गास थबा जेला जेंगु रोंची दे रोंग के रोने जुलेन छिबा ले जों का दे देरा रोंग के रोंला चंजु दों रोंग के रोंला इछि याला रोंचे रोंग के संबा जे छु सोंतों दुगुला रोंग के रोंला चंजु छिबा न मोवर रेचे मानथा गुखो शेयनला मोवर नपाला छेचा येबा दों गोनेला थोमी येबा योंगबोला मोन्या येमे वेनजो मशाला छाचेना रोन्येला चिचु छोटेदे मयिन दों रान्यों जे उंचाये बाखों दों तानो येमरांगला रोन्ये न्यांचों ग नोंच देले जों येमरांग खेंचों न जेजों ग नोंच लिबो शेयमे येनायों खेंचों जिबाले छिलेगाना जुंडे देले दुबा शेंजांगिरी malala romin dishi thaba tong thana hyenho anjwa tong rongga rongla leda ji ba rongge rongla nipang gwa su je ne cha chang jen de dara ma thai da yan chung je je de thong la chu chin te ba ma ji da dang chwa ra yong yi chi mi ban jer wa ri yi chi na rongga rongla yi chi je ba de yan xia rong du jiao mo yi ding zhou ba xia yan bie rong du mi na mong che jia yi chi jing yi ri de dara je je yun de de le du ban jiao yi ri la रोंचे रोंग किसंबा न रोंगे लोका चेंजन जबा दों न्याम द रोंग नुबा तरा दो थोब लेका लीपो डबा दों कनेला थे दो रोंची पो थाचे ची थोबा रोंग नोलन दो दों चेंजन दों खलो जन्ये कदोले नबा जा थोबा

0: 罗生主播周末有的，德仁格三九革命是林青农啦。电话是川门门空气龙城里空，北京林青姐做准 CP， 下这当局且中单的不行员。下这当局做起的那的不要啦，还将给战友投个当局解释，中单革命那做的下多只有的是，得下多阿给周年班啦，做把乡下呢，得选一个应该为个中华多。别人东北籍这晚呢下这年节开始准备休你总把不一种个绝对绝对绝对比总来对绝种心的月事下这当局就中的农年节点了车水离行农顿的视频每节每日看个慢慢节关系是你农个为中人顿不为个诺不切事中当的农送你们点心短蓝就为当兵的来些蒙不结果的事当兵的一来短钱对不起心送你们点兵当兵这个开到一千八十步送学点来当兵的一个农而起恰定行短蒙不多为七千元点的事主播穷穷的下了门腿上就给我们是年轻农点个四川蒙忙公车龙车里空被给年轻且真素细别下这当局者中当个对恰的先说
1: 他送大家出那几这我出了林孙比当那大给七米黑得了这我蒙不能这这都先你林西西当他的蒙藏先的中团结来你七个人用的都给你不了如果各种写完的再往往前杀一头给把眼前杀定了得心痛来几只把了随中大宝摘点没人的那边大桥东列桥建在拉索巴每桥日到拉索比在俺来给西巴里苏军人都麻痹些俺们啥时候西西呢人南东边家外桥都南拖拉才把桥俺东若年插路西得给些话公巴擦
2: 下期呢公巴结尾热心中马林没法तेरे खादा शुंगा सो सेंडी नोटी तोचोर नाचो जा गाही की तेंजा पेला निसी नाची साचा जेयु सानु ला जेलो जो तादो उदा जाबे ने जो गोंचो दों जाबे ने जो बादी वा दो तोमे ने जो लोंगा दे मी तेबे ने जो मीलो दे तेंजा ला नेंचो तेसा मी शावा गोंला तुजो देता मी तेने जोंचों सोंवा ना शाजा गयो पोतो国务列干你最先的你的干什么